तोदुजे बुइने जहनासान अक्तोवान सलगावे पत्तुगीम बलबासो था नर्तोदा उस छसीगी बुल्लुम बुल्लहम बेलगा कुरुवाई गते हेवने बैया हुँ चीची दील वे बलबासो न्यांग चिक्तुर हल जुक्कर बरवे उम्ची तोम्चीगी बलबासो चाल वेगर बल्ली गजे हे भेवंदन तोशान उज बरसना सूलर Buyum bol bol nula tundu bol ot coba dirin wit. Yang liang hoi ria wana hep cu sanurin telul jay. Kuskin dal daftul.

या फन्नी की दूध जे बीने जाना सान अक्टूबर साल का पत्तू की बलबासो था नर्तोता उस छसी की बुल्लम बुल्लम बेलगा कुरवाई का ते हमने भैया हूँ चीजी दील है बलबासो न्यांग चिकतुर हिल जुकर बारा है उम्ची तोमची की बलवासो चाल भैगर बल्ली के जे है भेवंदन तोशा नौज मर्सना सूल र पुयम बलबल नला धुन दो वाला चबा दिर हिन वित यांग लियांग हिरिया वाला हेप्ची सनुरिन देर उल्जे खुशकिन दलदा